0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है इटली के पोम्पेई और नेपल्स में संत पापा लियो की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। संत पापा लियो 14वें ने 8 मई 2026 को अपनी परमाध्यक्षीय नियुक्ति की पहली वर्षगांठ पर पोम्पेई और नेपल्स की प्रेरित यात्रा की। 8 मई 2025 को अगस्टीनियन धर्म समाज के पुरोहित फ्रांसिस प्रेवोस्ट लियो 14वें नाम ग्रहण कर विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस प्रेरित यात्रा के लिए संत पापा लियो 14वें रोम समय अनुसार शुक्रवार प्रातः 8 बजे वैटिकन के हेलीपैड से रवाना हुए। प्रातः 10 बजे वे पोम्पेई के मरियम तीर्थ पहुंचे, जहां पोम्पेई के महाधर्माध्यक्ष तोमासो कपुतो ने संपूर्ण महाधर्म प्रांत की ओर से उनका स्वागत किया तथा उनके आगमन के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कलीसिया के धर्माधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक एवं नागर अधिकारी भी उपस्थित थे। मरियम तीर्थ पर सर्वप्रथम संत पापा ने यहाँ सेवारत धर्म समाजी और धर्म संघी स्त्री पुरुषों एवं याजक वर्ग से मुलाकात की। तदोपरांत उन्होंने पोम्पेई पुण्य स्थल के लोकोपकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनके नेक कार्यों के लिए प्रभु ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। शुक्रवार 10:30 बजे संत पापा लियो 14वें ने पोम्पेई में रोजरी माला की धन्य कुंवारी मरियम को समर्पित पुण्य स्थल के निकट संत बार्थोलो प्रांगण में ख्रीस्त्याग अर्पित किया। पोम्पेई में मरियम तीर्थ के अतिरिक्त 19वीं शताब्दी के संत बार्थोलो का शव भी सुरक्षित रखा गया है, जो पहले एक शैतानी पुजारी थे किंतु मन परिवर्तन के बाद जिन्होंने कैथलिक धर्म में शरण पाई और उसका आलिंगन कर लिया था। शुक्रवार मध्यान्ह संत पापा लियो ने पोम्पेई की मरियम से पारंपरिक प्रार्थना का पाठ किया तथा उपस्थित हजारों तीर्थयात्रियों को अपना प्रेरित आशीर्वाद प्रदान किया।

संत पापा लियो 14वें ने पोम्पेई के त्रापानी भवन में शुक्रवार को मरियम स्थल से जुड़े लोकोपकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जरूरतमंदों के प्रति उनके नेक कार्यों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। इनमें धर्म समाजी और धर्म संघी पुरोहितों एवं धर्म बहनों, शिक्षकों और स्वयं सेवकों के प्रतिनिधि शामिल थे। उदारता के कार्यों में संलग्न प्रतिनिधियों का अभिवादन कर संत पापा ने कहा कि वे उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने पोम्पेई के महाधर्माध्यक्ष तोमासो कपूतो द्वारा उनके स्वागत में कहे शब्दों के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि संत बार्तोलो के पदचिन्हों पर अपनी पोम्पेई यात्रा की शुरुआत करना उनके लिए सौभाग्य की बात थी, जिन्हें उन्होंने विगत वर्ष 19 अक्टूबर को संत घोषित कर कलीसिया में वेदी का सम्मान प्रदान किया था। संत पापा ने स्मरण कराया कि संत बार्थोलो पोम्पेई घाटी को प्रेम की एक ऐसी जगह बताते थे जो दिल को खुश कर देती है, विश्वास और उदारता के विजय का स्थल, जिन्हें उन्होंने एक ही उड़ान में जुड़े हुए दो पंख निरूपित किया था। संत पापा ने कहा कि यह वास्तविकता अभी भी बहुत जीवित और स्पष्ट है। यहाँ इस मरियम तीर्थ पर प्रतिदिन के कार्यों में प्रभु येसु ख्रीस्त के फिर से जी उठने की ताकत महसूस की जा सकती है, जो प्रेम पूर्वक सुसमाचार के उत्तम जीवन के लिए दिलों को फिर से जिंदा करती है। यहाँ उन्होंने कहा, उदारता का मंदिर और विश्वास का मंदिर एक दूसरे को समर्थन देते हैं। संत पापा ने पोम्पेई तीर्थ स्थल द्वारा संचालित कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, प्रार्थना, स्वागत सत्कार, प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्रों, परिवार घरों तथा संत पापा फ्रांसिस के नाम पर बने सूप किचन में इतने सारे लोगों के स्वागत, प्रेम, सेवा और दिल खोलकर काम करने को प्रेरित करती है, तथा प्रेम उन लोगों के अंगों में जो दुख झेलते हैं और उससे भी अधिक उनकी आत्माओं में ऐसे चमत्कार करता है जो हर कोशिश और उम्मीद से कहीं अधिक बढ़कर होते हैं। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि जब संत बार्थोलो पहली बार पोम्पेई पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत गरीबी थी, मलेरिया फैला था तथा डाकुओं का आतंक था। फिर भी उन्होंने हर किसी में यीशु मसीह का चेहरा देखा, युवाओं और वयोवृद्धों में और खासकर अनाथों और कैदियों के बच्चों में, जिन्हें उन्होंने अपनी कोमलता से ईश्वर के दिल की धड़कन महसूस कराई। संत पापा ने याद किया कि जो लोग बार्थोलो से कहते थे कि उनके युवाओं की नियति भी उनके माता पिता जैसी होती है, तो उनका जवाब था कि प्रेम सबसे मुश्किल बच्चों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकता है और हर कोशिश में केवल उदारता ही विजय को सुनिश्चित कर सकती है। संत पापा ने कहा कि वे सही थे और अपने विश्वास और लगन से उन्होंने इस स्थल को ख्रिस्तीय जीवन और मरियम भक्ति का एक विश्व विख्यात स्थल बना दिया। संत पापा ने कहा कि इन सब नेक कार्यों का आधार थी प्रार्थना और विशेष रूप से रोजरी माला विनती, जिसे इस पवित्र जगह और शहर की नींव में एक निशान के तौर पर रखा गया है। यह वह छिपा हुआ इंजन है जो बाकी सब कुछ को मुमकिन बनाता है। अस्तु, उन्होंने कहा, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस प्राचीन और खूबसूरत भक्ति को हमेशा जीवित रखें और इसका प्रसार करें, जिसके माध्यम से हम मरियम की सीधी और माँ स्वरूप आँखों से येसु के जीवन रहस्यों पर मनन चिंतन करते हैं, जैसा कि संत जॉन पॉल द्वितीय अपने प्रेरितिक पत्र रोजारियम वर्जिनिस मरिये में लिखते हैं, जो कुछ उन्होंने किया है वह हमारे दिलों में उतरता है और हमारे जीवन को रूपांतरित कर देता है। संत पापा लियो ने सभी को आमंत्रित किया कि वे माँ मरियम से तथा संत बार्थोलो से जुड़े रहें तथा इस विश्वास के साथ संपूर्ण मानवता को मरियम के संरक्षण के सिपुर्द करें कि उनकी कृपा से कोई भी चीज हमें अच्छा करने से नहीं रोक पाएगी तथा यहाँ और हर जगह शांति के भविष्य की हमारी उम्मीद पूरी होगी।

0: संत पापालियो 14वें पोम्पेई में उदारता के मंदिर में प्रतिनिधियों और तीर्थस्थल के उदार कार्यों में हाथ बटाने वालों से मिलने और संदेश देने के बाद खुली कार से शहर का दौरा करते हुए सुबह 10 बजे बार्तोलो लोंगो प्रांगण पहुंचे। पवित्र मिसा के लिए तैयार वेदी के सामने संत पापा ने वहां उपस्थित सभी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए कहा, आप सबको शुभ प्रभात, आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद। जल्द ही हम पवित्र मिसा समारोह मनाएंगे। यीशु ख्रिस्त और यूखरिस्त के साथ यह खूबसूरत मुलाकात। यीशु हमेशा हमारे साथ चलते हैं, हमारे करीब, और यहाँ इस तीर्थालय में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी माँ हमेशा हमारे साथ है। हमारी माँ मरिया अपने बच्चों के साथ हमेशा हमारे साथ हैं। आप सबको धन्यवाद, जल्द ही पवित्र मिसा में मिलते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा गिरजाघर के अंदर गए। तीर्थालय में प्रवेश द्वार पर रेक्टर मोनसिन्यो और पास्क्वाले ने संत पापा का स्वागत किया। संत पापा गिरजाघर में प्रवेश कर वहां उपस्थित बीमार और विकलांग लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े। बेदी के पास पहुंचकर संत पापा ने उनसे कहा, आप सभी को शुभ प्रभात, यीशु ख्रिस्त की जय हो। कितना खूबसूरत दिन है, आज प्रभु ने हम सबको कितनी दुआएं दी है। मैं खुद को सबसे पहले धन्य महसूस करता हूं कि मैं इस साल गिरह पर प्रार्थना के दिन हमारी माता के तीर्थालय में आ पाया हूं। यहां आने के लिए आप सबको धन्यवाद। उसके बाद संत पापा ने पवित्र संस्कार के सामने कुछ देर मौन प्रार्थना किया और तीर्थस्थल के संस्थापक संत बार्तोलो लोंगो को समर्पित प्रार्थनालय गए। उनके पार्थिव शरीर के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रार्थना किया। इसके बाद संत पापा मेलजोल चैपल में तीर्थस्थल के पुरोहितों से मुलाकात किए। कार्यक्रम के अनुसार 10:30 बजे संत पापा लियो ने बार्तोलो लोंगो प्रांगण में ख्रिस्त्याग समारोह शुरू किया।
1: संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा,
2: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine.
1: ठीक एक साल पहले जब मैंने संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी की प्रेरिताई शुरू की, यह पोम्पेई की पवित्र कुमारी से निवेदन रोजरी प्रार्थना का दिन था। यही कारण है कि मैं यहाँ आता हूँ अपनी सेवा को पवित्र कुमारी के चरणों में अर्पित करने हेतु। उन्होंने कहा, लियो के नाम का चुनाव करते हुए मैं संत पापा 13वें के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ, जिन्होंने अन्य भक्तियों के अलावे रोजरी माला के धर्म सिद्धांत का विकास किया। आनंद के सुसमाचार की घोषणा हमें उस परिस्थिति से वाकिफ करती है जब ईश्वर का वचन मरियम के गर्भ में देह धारण किया। उस गर्भ से वह ज्योति प्रस्फुटित होती है जो इतिहास और दुनिया को संपूर्ण अर्थ प्रदान करती है। स्वर्गदूत गाब्रियल के द्वारा कुमारी मरियम को दिया गया अभिवादन आनंदित होने का निमंत्रण है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, संत पापा ने कहा। हाँ, प्रणाम मरिया हमारे लिए आनंदित होने का एक निमंत्रण है। यह मानवता की विध्वंस परिस्थिति में जहाँ हम पाप के कारण शोषण सतावट और युद्धों को पाते हैं, ईश्वर की करुणा हमारे लिए यीशु ख्रीस्त के रूप में आती है। मरियम हमारे लिए करुणा की माता बनती हैं। संत पापा ने कहा, मरियम के हाँ में न केवल यीशु का जन्म होता है बल्कि कलिस्से के जन्म को भी हम देखते हैं, और मरियम इस भांति ईश्वर की माता थियोटोकस और कलिस्से की माता दोनों बन जाती हैं। संत पापा ने कहा कि यह एक अद्वितीय रहस्य है। हम सारी चीजों को पवित्र आत्मा की शक्ति में पूरा होता पाते हैं जो मरियम पर उतरती और उनके कुंवारे गर्भ को फलहित करते हैं। इतिहास का यह क्षण अपने में अति सुंदर और शक्तिशाली है जो हृदयों को आकर्षित करता और इसे पवित्र रोजरी प्रार्थना की उत्पत्ति में अपनी चरम प्रदान करता है। प्रणाम मरियम, रोजरी में इस प्रार्थना को दोहराना स्वर्गदूत के संबोधन को प्रतिध्वनित करता है जो सदियों तक फैली है और विश्वासियों की निगाहों को यीशु की ओर बनाए रखती है, जहां हम माँ की आंखों और निगाहों को पाते हैं। रोजरी बिनती के रहस्यों में यीशु की आराधना हम मनन चिंतन करते हैं। रोजरी बिनती के दौरान ईश वचन की घोषणा के बाद हे पिता हमारे और त्रित्व में ईश्वर के महिमा के बीच में प्रणाम मरियम की बारंबारता प्रेम के कार्य को प्रकट करता है। प्रेम का कार्य जिसे हम मरियम के इस तीर्थ स्थल के चित्रकारिता में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो हमें यीशु की ओर अग्रसर करता और यूखरिस्त की ओर लेकर आता है, जो हमारे ख्रिस्तीय जीवन का स्रोत और चरम सीमा है। हमारी दैनिक प्रार्थना कलीसियाई आराधना है, तो रोजरी हमारे जीवन की लय को व्यक्त करती है, जो हमें निरंतर यीशु और यूखरिस्त की ओर लेकर आती है। संत पापा ने कहा, हर प्रणाम मरियम की प्रार्थना में हम नाजरेत के घर का अनुभव करते हैं, जहां यीशु मरियम और योसेफ के संग रहे। हम अंतिम व्यारी की कोठरी का भी अनुभव करते हैं, जहां मरियम प्रेरितों के संग पवित्र आत्मा के आने की प्रतीक्षा करती हैं। रोजरी हमारे लिए सुसमाचार की पूर्णता को व्यक्त करती है, जिसमें संत पापा जोन पाउल द्वितीय ने प्रकाश के भेदों को जोड़ते हुए पूरा किया। संत पापा जोन पाउल द्वितीय रोजरी के साल की घोषणा करते हुए पोम्पेई कुमारी मरियम को एक विशेष महत्व देना चाहते थे। तब से समय बेहतर नहीं हुआ है। दुनिया के कई इलाकों में अब भी जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, वे न सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक तौर पर निष्ठा की मांग करते हैं।
2: Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
1: भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा, दुनिया को कोई भी दुनियावी ताकत नहीं बचा सकती है, बल्कि सिर्फ प्रेम की दिव्य ताकत ही बचा सकती है, जिसे प्रभु यीशु ने हमें दिखाया और दिया है। आइए हम उन पर विश्वास करें, उनसे उम्मीद रखें, आइए हम उनका अनुसरण करें।
0: पवित्र मिसा के अंतिम आशीर्वाद से पहले संत पापा और विश्वासियों ने मिलकर पोम्पेई की रोजरी की माता मरियम से प्रार्थना की। इसके बाद पोम्पेई के धर्माध्यक्ष तोमासो कापुतो ने संत पापा लियो को पवित्र मिसा का अनुष्ठान करने और इस पवित्र दिन में तीर्थालय आकर उनके लिए प्रार्थना करने हेतु सभी विश्वासियों के नाम पर धन्यवाद दिया। पवित्र मिसा के बाद संत पापा ने पोंटिफिकल प्रतिनिधि मंडल के सहयोगियों का अभिवादन किया और करीब 1 बजे मरियाना डी फुस्को हॉल में संत पापा लियो धर्माध्यक्षों पुरोहितों और धर्म संघियों के साथ दोपहर का भोजन किया। कुछ देर आराम करने के बाद संत पापा लियो दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से नेपल्स के लिए रवाना हुए और 15 मिनट की यात्रा के बाद संत पापा नेपल्स पहुंचे, जहां नेपल्स के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल डोमेनिको बतालिया और वहां के सिविल अधिकारी ने संत पापा लियो का स्वागत किया। नेपल्स के महागिरजाघर के सामने संत पापा लियो 14वें का स्वागत बच्चों का एक बड़ा दल किया। अंदर जाने के बाद संत पापा सबसे पहले पवित्र संस्कार की आराधना के लिए संत जेनारो के प्रार्थनालय में प्रवेश किए और ऊंची वेदी जहां संत जेनारो के खून की शीशियों वाली मूर्ति और पवित्र अवशेष का दर्शन किया। कुछ देर प्रार्थना करने के बाद महाधर्म प्रांत के पुरोहितों और धर्म संघियों से मिलने के लिए महागिरजाघर गए। महागिरजाघर में संत पापा लियो महाधर्म प्रांत के धर्माध्यक्षों पुरोहितों धर्म संघियों धर्म बहनों को संबोधित करते हुए कहा, कला और संस्कृति से इतने समृद्ध भूमध्य सागर के बीच बसे इस शहर में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, जहां इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद अनोखे और खुश मिजाज लोग रहते हैं। मेरे पूर्ववर्ती संत पापा फ्रांसिस 2015 में आए थे और उन्होंने कहा था, नेपल्स में जिंदगी कभी आसान नहीं रही, लेकिन कभी दुखद भी नहीं रहा। यही आपका सबसे बड़ा संसाधन है, खुशी और उत्साह। आज मैं भी खुशी से भर जाने के लिए यहाँ आया हूँ। संत पापा ने कहा कि दोस्ती और भाईचारे की इस भावना के साथ वे एक छोटी सी बात साझा करना चाहते हैं और वे उम्मीद करते हैं कि ये उनके जीवन यात्रा में समर्थन और हिम्मत देगी और कलीसियाई एवं प्रेरितिक जीवन के लिए काम आएगी। संत पापा ने कहा, जब वे एम्माउस के रास्ते पर दो शिष्यों की कहानी सुनते हैं तो दिल में एक शब्द गूंजता है, देखभाल। उन दो शिष्यों की तरह हम भी अक्सर अपनी यात्रा पर चलते रहते हैं, इतिहास के संकेतों को समझ नहीं पाते। हम अपने दिल में दुख और कड़वाहट महसूस करते हैं, हालांकि यीशु हमारे साथ खड़े हैं और हमारे साथ चलते हैं, हमें एक नई रोशनी दिखाने के लिए हमारे साथ चलते हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति का मनोभाव है जो परवाह करता है। आप डरे नहीं, निराश ना होवे और कलीसिया एवं इस शहर के लिए मसीह के गवाह बने और भविष्य के बीज बोएं। इसके बाद संत पापा महागिरजाघर से निकलकर नेपल्स के केंद्रीय चौक पियासा देल प्लेबिशितो जाएंगे, जहां शाम 5:15 बजे विश्वासियों से उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद वे सिविल और धार्मिक अधिकारियों के साथ मिनिम्स समुदाय से भेंट करने के लिए सैन फ्रांसिस्को दी पाओलो महागिरजाघर जाएंगे। संत पापा लियो 14वें पियासा देल प्लेबिस्तो में नेपल्स के लोगों से मिलेंगे और शहर को संबोधित करेंगे। सभा के अंत में कुंवारी मरियम को इसके प्रतिष्ठान की 200वीं सालगिरह के मौके पर प्रांगण में लाया जाएगा और संत पापा लियो 14वें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद देंगे। इसके बाद संत पापा रोतोंदो दियाज जाएंगे, जहां से वे 6:45 बजे हेलीकॉप्टर से वाटिकन के लिए रवाना होंगे। श्रोताओं, वाटिकन रेडियो से आज का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है इटली के पोम्पेई और नेपल्स में संत पापा लियो की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। संत पापा लियो 14वें ने 8 मई 2026 को अपनी परमाध्यक्षीय नियुक्ति की पहली वर्षगांठ पर पोम्पेई और नेपल्स की प्रेरित यात्रा की। 8 मई 2025 को अगस्टीनियन धर्म समाज के पुरोहित फ्रांसिस प्रेवोस्ट लियो 14वें नाम ग्रहण कर विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस प्रेरित यात्रा के लिए संत पापा लियो 14वें रोम समय अनुसार शुक्रवार प्रातः 8 बजे वेटिकन के हेलीपैड से रवाना हुए। प्रातः 10 बजे वे पोम्पेई के मरियम तीर्थ पहुंचे, जहां पोम्पेई के महाधर्माध्यक्ष तोमासो कपुतो ने संपूर्ण महाधर्म प्रांत की ओर से उनका स्वागत किया तथा उनके आगमन के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कलीसिया के धर्माधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक एवं नागर अधिकारी भी उपस्थित थे। मरियम तीर्थ पर सर्वप्रथम संत पापा ने यहाँ सेवारत धर्म समाजी और धर्म संघी स्त्री पुरुषों एवं याजक वर्ग से मुलाकात की। तदुपरांत उन्होंने पोम्पेई पुण्य स्थल के लोकोपकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनके नेक कार्यों के लिए प्रभु ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। शुक्रवार 10:30 बजे संत पापा लियो 14वें ने पोम्पेई में रोजरी माला की धन्य कुमारी मरियम को समर्पित पुण्य स्थल के निकट संत बार्थोलो प्रांगण में ख्रीस्त त्याग अर्पित किया। पोम्पेई में मरियम तीर्थ के अतिरिक्त 19वीं शताब्दी के संत बार्थोलो का शव भी सुरक्षित रखा गया है, जो पहले एक शैतानी पुजारी थे किंतु मन परिवर्तन के बाद जिन्होंने कैथलिक धर्म में शरण पाई और उसका आलिंगन कर लिया था। शुक्रवार मध्याह्न संत पापा लियो ने पोम्पेई की मरियम से पारंपरिक प्रार्थना का पाठ किया तथा उपस्थित हजारों तीर्थयात्रियों को अपना प्रेरित आशीर्वाद प्रदान किया।

संत पापा लियो 14वें ने पोम्पेई के त्रापानी भवन में शुक्रवार को मरियम स्थल से जुड़े लोकोपकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जरूरतमंदों के प्रति उनके नेक कार्यों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। इनमें धर्म समाजी और धर्म संघी पुरोहितों एवं धर्म बहनों, शिक्षकों और स्वयं सेवकों के प्रतिनिधि शामिल थे। उदारता के कार्यों में संलग्न प्रतिनिधियों का अभिवादन कर संत पापा ने कहा कि वे उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने पोम्पेई के महाधर्माध्यक्ष तोमासो कपूतो द्वारा उनके स्वागत में कहे शब्दों के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि संत बार्तोलो के पद चिन्हों पर अपनी पोम्पेई यात्रा की शुरुआत करना उनके लिए सौभाग्य की बात थी, जिन्हें उन्होंने विगत वर्ष 19 अक्टूबर को संत घोषित कर कलीसिया में वेदी का सम्मान प्रदान किया था। संत पापा ने स्मरण कराया कि संत बार्थोलो पोम्पेई घाटी को प्रेम की एक ऐसी जगह बताते थे जो दिल को खुश कर देती है, विश्वास और उदारता के विजय का स्थल, जिन्हें उन्होंने एक ही उड़ान में जुड़े हुए दो पंख निरूपित किया था। संत पापा ने कहा कि यह वास्तविकता अभी भी बहुत जीवित और स्पष्ट है। यहाँ इस मरियम तीर्थ पर प्रतिदिन के कार्यों में प्रभु येसु ख्रीस्त के फिर से जी उठने की ताकत महसूस की जा सकती है, जो प्रेम पूर्वक सुसमाचार के उत्तम जीवन के लिए दिलों को फिर से जिंदा करती है। यहाँ उन्होंने कहा, उदारता का मंदिर और विश्वास का मंदिर एक दूसरे को समर्थन देते हैं। संत पापा ने पोम्पेई तीर्थ स्थल द्वारा संचालित कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, प्रार्थना, स्वागत, सत्कार, प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्रों, परिवार घरों तथा संत पापा फ्रांसिस के नाम पर बने सूप किचन में इतने सारे लोगों के स्वागत, प्रेम, सेवा और दिल खोलकर काम करने को प्रेरित करती है, तथा प्रेम उन लोगों के अंगों में जो दुख झेलते हैं और उससे भी अधिक उनकी आत्माओं में ऐसे चमत्कार करता है जो हर कोशिश और उम्मीद से कहीं अधिक बढ़कर होते हैं। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि जब संत बार्थोलो पहली बार पोम्पेई पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत गरीबी थी, मलेरिया फैला था तथा डाकुओं का आतंक था। फिर भी उन्होंने हर किसी में यीशु मसीह का चेहरा देखा, युवाओं और वयोवृद्धों में और खासकर अनाथों और कैदियों के बच्चों में, जिन्हें उन्होंने अपनी कोमलता से ईश्वर के दिल की धड़कन महसूस कराई। संत पापा ने याद किया कि जो लोग बार्थोलो से कहते थे कि उनके युवाओं की नियति भी उनके माता पिता जैसी होती है, तो उनका जवाब था कि प्रेम सबसे मुश्किल बच्चों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकता है और हर कोशिश में केवल उदारता ही विजय को सुनिश्चित कर सकती है। संत पापा ने कहा कि वे सही थे और अपने विश्वास और लगन से उन्होंने इस स्थल को ख्रिस्तीय जीवन और मरियम भक्ति का एक विश्व विख्यात स्थल बना दिया। संत पापा ने कहा कि इन सब नेक कार्यों का आधार थी प्रार्थना और विशेष रूप से रोजरी माला विनती, जिसे इस पवित्र जगह और शहर की नींव में एक निशान के तौर पर रखा गया है। यह वह छिपा हुआ इंजन है जो बाकी सब कुछ को मुमकिन बनाता है। अस्तु, उन्होंने कहा, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस प्राचीन और खूबसूरत भक्ति को हमेशा जीवित रखें और इसका प्रसार करें, जिसके माध्यम से हम मरियम की सीधी और माँ स्वरूप आँखों से येसु के जीवन रहस्यों पर मनन चिंतन करते हैं, जैसा कि संत जॉन पॉल द्वितीय अपने प्रेरितिक पत्र रोजारियम वर्जिनिस मरियम में लिखते हैं, जो कुछ उन्होंने किया है वह हमारे दिलों में उतरता है और हमारे जीवन को रूपांतरित कर देता है। संत पापा लियो ने सभी को आमंत्रित किया कि वे माँ मरियम से तथा संत बार्थोलो से जुड़े रहें तथा इस विश्वास के साथ संपूर्ण मानवता को मरियम के संरक्षण के सुपुर्द करें कि उनकी कृपा से कोई भी चीज हमें अच्छा करने से नहीं रोक पाएगी तथा यहाँ और हर जगह शांति के भविष्य की हमारी उम्मीद पूरी होगी।

0: संत पापा लियो 14वें पोम्पेई में उदारता के मंदिर में प्रतिनिधियों और तीर्थस्थल के उदार कार्यों में हाथ बटाने वालों से मिलने और संदेश देने के बाद खुली कार से शहर का दौरा करते हुए सुबह 10 बजे बार्तोलो लोंगो प्रांगण पहुंचे। पवित्र मिसा के लिए तैयार वेदी के सामने संत पापा ने वहां उपस्थित सभी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए कहा, आप सबको शुभ प्रभात, आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद। जल्द ही हम पवित्र मिसा समारोह मनाएंगे। यीशु ख्रिस्त और यूखरिस्त के साथ यह खूबसूरत मुलाकात। यीशु हमेशा हमारे साथ चलते हैं, हमारे करीब। और यहाँ इस तीर्थालय में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी माँ हमेशा हमारे साथ है। हमारी माँ मरिया अपने बच्चों के साथ हमेशा हमारे साथ हैं। आप सबको धन्यवाद। जल्द ही पवित्र मिसा में मिलते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा गिरजाघर के अंदर गए। तीर्थालय में प्रवेश द्वार पर रेक्टर मोनसिन्यो और पास्क्वाले ने संत पापा का स्वागत किया। संत पापा गिरजाघर में प्रवेश कर वहां उपस्थित बीमार और विकलांग लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े। बेदी के पास पहुंचकर संत पापा ने उनसे कहा, आप सभी को शुभ प्रभात, यीशु ख्रिस्त की जय हो। कितना खूबसूरत दिन है। आज प्रभु ने हम सबको कितनी दुआएं दी है। मैं खुद को सबसे पहले धन्य महसूस करता हूं कि मैं इस साल गिरह पर प्रार्थना के दिन हमारी माता के तीर्थालय में आ पाया हूं। यहां आने के लिए आप सबको धन्यवाद। उसके बाद संत पापा ने पवित्र संस्कार के सामने कुछ देर मौन प्रार्थना किया और तीर्थ स्थल के संस्थापक संत बार्तोलो लोंगो को समर्पित प्रार्थनालय गए। उनके पार्थिव शरीर के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रार्थना किया। इसके बाद संत पापा मेलजोल चैपल में तीर्थस्थल के पुरोहितों से मुलाकात किए। कार्यक्रम के अनुसार 10:30 बजे संत पापा लियो ने बार्तोलो लोंगो प्रांगण में ख्रिस्त्याग समारोह शुरू किया।
1: संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा,
2: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine.
1: ठीक एक साल पहले जब मैंने संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी की प्रेरिताई शुरू की, यह पोम्पेई की पवित्र कुमारी से निवेदन रोजरी प्रार्थना का दिन था। यही कारण है कि मैं यहाँ आता हूँ अपनी सेवा को पवित्र कुमारी के चरणों में अर्पित करने हेतु। उन्होंने कहा, लियो के नाम का चुनाव करते हुए मैं संत पापा 13वें के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ, जिन्होंने अन्य भक्तियों के अलावे रोजरी माला के धर्म सिद्धांत का विकास किया। आनंद के सुसमाचार की घोषणा हमें उस परिस्थिति से वाकिफ करती है जब ईश्वर का वचन मरियम के गर्भ में देह धारण किया। उस गर्भ से वह ज्योति प्रस्फुटित होती है जो इतिहास और दुनिया को संपूर्ण अर्थ प्रदान करती है। स्वर्गदूत गाब्रियल के द्वारा कुमारी मरियम को दिया गया अभिवादन आनंदित होने का निमंत्रण है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, संत पापा ने कहा। हाँ, प्रणाम मरिया हमारे लिए आनंदित होने का एक निमंत्रण है। यह मानवता की विध्वंस परिस्थिति में जहाँ हम पाप के कारण शोषण सतावट और युद्धों को पाते हैं, ईश्वर की करुणा हमारे लिए यीशु ख्रीस्त के रूप में आती है। मरियम हमारे लिए करुणा की माता बनती हैं। संत पापा ने कहा, मरियम के हाँ में ना केवल यीशु का जन्म होता है बल्कि कलिस्य के जन्म को भी हम देखते हैं और मरियम इस भांति ईश्वर की माता थियोटोकस और कलिस्य की माता दोनों बन जाती हैं। संत पापा ने कहा कि यह एक अद्वितीय रहस्य है। हम सारी चीजों को पवित्र आत्मा की शक्ति में पूरा होता पाते हैं जो मरियम पर उतरती और उनके कुंवारे गर्भ को फलहित करते हैं। इतिहास का यह क्षण अपने में अति सुंदर और शक्तिशाली है जो हृदयों को आकर्षित करता और इसे पवित्र रोजरी प्रार्थना की उत्पत्ति में अपनी चरम प्रदान करता है। प्रणाम मरियम, रोजरी में इस प्रार्थना को दोहराना स्वर्गदूत के संबोधन को प्रतिध्वनित करता है जो सदियों तक फैली है और विश्वासियों की निगाहों को यीशु की ओर बनाए रखती है, जहां हम माँ की आंखों और निगाहों को पाते हैं। रोजरी बिनती के रहस्यों में यीशु की आराधना हम मनन चिंतन करते हैं। रोजरी बिनती के दौरान ईश वचन की घोषणा के बाद हे पिता हमारे और त्रित्व में ईश्वर के महिमा के बीच में प्रणाम मरियम की बारंबारता प्रेम के कार्य को प्रकट करता है। प्रेम का कार्य जिसे हम मरियम के इस तीर्थ स्थल के चित्रकारिता में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो हमें यीशु की ओर अग्रसर करता और यूखरिस्त की ओर लेकर आता है, जो हमारे ख्रिस्तीय जीवन का स्रोत और चरम सीमा है। हमारी दैनिक प्रार्थना कलीसियाई आराधना है, तो रोजरी हमारे जीवन की लय को व्यक्त करती है, जो हमें निरंतर यीशु और यूखरिस्त की ओर लेकर आती है। संत पापा ने कहा, हर प्रणाम मरियम की प्रार्थना में हम नाजरेत के घर का अनुभव करते हैं, जहां यीशु मरियम और योसेफ के संग रहे। हम अंतिम व्यारी की कोठरी का भी अनुभव करते हैं, जहां मरियम प्रेरितों के संग पवित्र आत्मा के आने की प्रतीक्षा करती हैं। रोजरी हमारे लिए सुसमाचार की पूर्णता को व्यक्त करती है, जिसमें संत पापा जोन पावल द्वितीय ने प्रकाश के भेदों को जोड़ते हुए पूरा किया। संत पापा जोन पॉल द्वितीय रोजरी के साल की घोषणा करते हुए पोम्पेई कुमारी मरियम को एक विशेष महत्व देना चाहते थे। तब से समय बेहतर नहीं हुआ है। दुनिया के कई इलाकों में अब भी जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, वे न सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक तौर पर निष्ठा की मांग करते हैं।
2: Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
1: भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा, दुनिया को कोई भी दुनियावी ताकत नहीं बचा सकती है, बल्कि सिर्फ प्रेम की दिव्य ताकत ही बचा सकती है, जिसे प्रभु यीशु ने हमें दिखाया और दिया है। आइए हम उन पर विश्वास करें, उनसे उम्मीद रखें, आइए हम उनका अनुसरण करें।
0: पवित्र मिसा के अंतिम आशीर्वाद से पहले संत पापा और विश्वासियों ने मिलकर पोम्पेई की रोजरी की माता मरियम से प्रार्थना की। इसके बाद पोम्पेई के धर्माध्यक्ष तोमासो कापुतो ने संत पापा लियो को पवित्र मिसा का अनुष्ठान करने और इस पवित्र दिन में तीर्थालय आकर उनके लिए प्रार्थना करने हेतु सभी विश्वासियों के नाम पर धन्यवाद दिया। पवित्र मिसा के बाद संत पापा ने पोंटिफिकल प्रतिनिधि मंडल के सहयोगियों का अभिवादन किया और करीब 1 बजे मरियाना डी फुस्को हॉल में संत पापा लियो धर्माध्यक्षों पुरोहितों और धर्म संघियों के साथ दोपहर का भोजन किया। कुछ देर आराम करने के बाद संत पापा लियो दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से नेपल्स के लिए रवाना हुए और 15 मिनट की यात्रा के बाद संत पापा नेपल्स पहुंचे, जहां नेपल्स के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल डोमेनिको बतालिया और वहां के सिविल अधिकारी ने संत पापा लियो का स्वागत किया। नेपल्स के महागिरजाघर के सामने संत पापा लियो 14वें का स्वागत बच्चों का एक बड़ा दल किया। अंदर जाने के बाद संत पापा सबसे पहले पवित्र संस्कार की आराधना के लिए संत जेनारो के प्रार्थनालय में प्रवेश किए और ऊंची वेदी जहां संत जेनारो के खून की शीशियों वाली मूर्ति और पवित्र अवशेष का दर्शन किया। कुछ देर प्रार्थना करने के बाद महाधर्म प्रांत के पुरोहितों और धर्म संघियों से मिलने के लिए महागिरजाघर गए। महागिरजाघर में संत पापा लियो महाधर्म प्रांत के धर्माध्यक्षों पुरोहितों धर्म संघियों धर्म बहनों को संबोधित करते हुए कहा, कला और संस्कृति से इतने समृद्ध भूमध्य सागर के बीच बसे इस शहर में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, जहां इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद अनोखे और खुश मिजाज लोग रहते हैं। मेरे पूर्ववर्ती संत पापा फ्रांसिस 2015 में आए थे और उन्होंने कहा था, नेपल्स में जिंदगी कभी आसान नहीं रही, लेकिन कभी दुखद भी नहीं रहा। यही आपका सबसे बड़ा संसाधन है, खुशी और उत्साह। आज मैं भी खुशी से भर जाने के लिए यहाँ आया हूँ। संत पापा ने कहा कि दोस्ती और भाईचारे की इस भावना के साथ वे एक छोटी सी बात साझा करना चाहते हैं और वे उम्मीद करते हैं कि ये उनके जीवन यात्रा में समर्थन और हिम्मत देगी और कलीसियाई एवं प्रेरितिक जीवन के लिए काम आएगी। संत पापा ने कहा, जब वे एम्माउस के रास्ते पर दो शिष्यों की कहानी सुनते हैं तो दिल में एक शब्द गूंजता है, देखभाल। उन दो शिष्यों की तरह हम भी अक्सर अपनी यात्रा पर चलते रहते हैं, इतिहास के संकेतों को समझ नहीं पाते। हम अपने दिल में दुख और कड़वाहट महसूस करते हैं, हालांकि यीशु हमारे साथ खड़े हैं और हमारे साथ चलते हैं, हमें एक नई रोशनी दिखाने के लिए हमारे साथ चलते हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति का मनोभाव है जो परवाह करता है। आप डरे नहीं, निराश ना होवे और कलीसिया एवं इस शहर के लिए मसीह के गवाह बने और भविष्य के बीज बोएं। इसके बाद संत पापा महागिरजाघर से निकलकर नेपल्स के केंद्रीय चौक पियासा देल प्लेबिशितो जाएंगे, जहां शाम 5:15 बजे विश्वासियों से उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद वे सिविल और धार्मिक अधिकारियों के साथ मिनिम्स समुदाय से भेंट करने के लिए सन फ्रांसिस्को दी पाओलो महागिरजाघर जाएंगे। संत पापा लियो 14वें पियासा देल प्लेबिस्टो में नेपल्स के लोगों से मिलेंगे और शहर को संबोधित करेंगे। सभा के अंत में कुंवारी मरियम को इसके प्रतिष्ठान की 200वीं सालगिरह के मौके पर प्रांगण में लाया जाएगा और संत पापा लियो 14वें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद देंगे। इसके बाद संत पापा रोतोंदो दियाज जाएंगे, जहां से वे 6:45 बजे हेलीकॉप्टर से वाटिकन के लिए रवाना होंगे। श्रोताओं, वाटिकन रेडियो से आज का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काथी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
3: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
3: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए

0: मरने के समय आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
1: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं।
2: मतलब पापियों के मन फिराव
0: हे
2: के
0: पिता
2: लिए।
0: हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन

0: को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा कर।

0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव का जीवन दूसरों की सहायता के बिना इस पृथ्वी पर असंभव तो नहीं, पर निश्चित रूप से थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। मानव अपने में कितना भी उन्नतशील या सामर्थ्यवान क्यों ना हो जाए, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उसे किसी न किसी बात को लेकर दूसरे से मदद या सहायता हेतु आश्रित होना पड़ता है। यह हमारे लिए मानवीय संवेदना को व्यक्त करता है, जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि मानव के रूप में हम अपने में पूर्ण नहीं हैं और ना ही कभी होंगे। श्रोताओं, पास्का के छठवें रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम ईश्वर के द्वारा मानव को दिए गए एक सहायक की चर्चा सुनते हैं। वह सहायक जो सदैव हमारे निकट रहता और हमें अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में मदद करता है, जिससे हम सही मार्ग का चुनाव कर सकें। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि क्या हम ईश्वर के द्वारा दिए गए अपने सहायक की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। क्या हम उनकी बातों को, जो हमारे लिए सलाह के रूप में आती है, सुनते हैं? क्या हम उस सहायक से वार्ता करते और उसे अपने जीवन में अहमियत देते हैं?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता है और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है, उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें ईश्वर के द्वारा मिले सहायक से एक अच्छा संबंध स्थापित करने को अग्रसर करें। विशेषकर हम उस आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में जान सकें, उन्हें पहचान सकें, जिससे हम उनके निर्देशानुसार उन सारी बातों का चुनाव कर सकें जो हमारे लिए सदैव बेहतर होती हैं। श्रोताओं, प्रेरित चरित्र से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए गैर यहूदियों में सुसमाचार का तेजी से प्रसारित होने की बात कहता है। गैर यहूदियों के मध्य हम फिलिप को ईश वचन घोषित करते और कई चमत्कारों को पूरा करते हुए सुनते हैं, जिन्हें देखकर विश्वासियों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रेरित पेत्रुस और योहन आकर बपतिस्मा प्राप्त नए दीक्षार्थियों पर अपना हाथ रखते और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। नए ख्रिस्तीय विश्वासियों का पवित्र आत्मा से अभियंजन हमें भी अपने जीवन में पवित्र आत्मा के अभियंजन स्वरूप मिली ईश्वरीय वरदानों की परख करने और उसके अनुरूप आचरण करने का निमंत्रण देता है। ईश्वर का आत्मा हमें सर्वप्रथम अपने विश्वास में सुदृढ़ करता और पुनर्जीवित प्रभु का साक्ष्य देने को प्रेरित करता है। यह हमें सभी प्रकार के भय और शंका से मुक्त कर अपने में स्वतंत्रता की अनुभूति प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप हम ईश्वर के वे सुयोग्य साधन बनते हैं, जिनका उपयोग वे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। इस भांति हम स्वयं का साक्ष्य नहीं देते, बल्कि उस ईश्वर का साक्ष्य देते हैं जिन्होंने हमें जीवन प्रदान किया है। श्रोताओं, हमारे जीवन में इस मनोभाव को आज का दूसरा पाठ व्यक्त करता है, जो संत पेत्रुस के पहले पत्र से लिया गया है। हमें प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखने और इसके साथ ही अपने अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए कहा जाता है। हमारा अंतःकरण हमारे लिए और कुछ नहीं बल्कि हृदय का वह आंतरिक स्थल है, जिसे हम ईश्वरीय आत्मा के निवास स्थल स्वरूप पाते हैं, जहां पवित्र आत्मा हमें जीवन की सच्चाई, अच्छाई और भलाई पूर्ण बातों से रूबरू करते हैं। वे बातें हमारे लिए होती हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर की महिमा और आराधना करते हुए अपने जीवन में ईश्वरीय दिव्य प्रेम, शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। अपने इस अनंत अनुभूति को दूसरों के संग साझा करने हेतु ईश्वर हमें प्रेरित करते और हमें स्वयं से बाहर उनके मध्य ले चलते हैं जिन्हें उनकी आशीष और कृपाओं अर्थात पवित्र आत्मा की जरूरत है। अपने शुद्ध अंतःकरण के कारण हम स्वयं में लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि जो हम पर दोष लगाते उन्हें अपने में लज्जित होना पड़ता है। इस भांति ईश्वर हमें अपने अच्छे कार्यों का साक्षी बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने स्वयं हमारे लिए किया है। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसे हमने सुना हमें ईश्वर के प्रेम का एक साक्ष्य देता है। हम जिन्हें प्रेम करते और हृदय से चाहते हैं उन्हें हम उन सुंदर और अच्छी वस्तुओं को प्रदान करते हैं, इसी चाह के साथ कि वे चीजें जीवन भर उनके संग बनी रहें और उन्हें हमारे अमर प्रेम की याद दिलाएं। ईश्वर हमारे संग ठीक वैसा ही करते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा को प्रदान किया है जो सदैव हमारे संग निवास करती और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हम बुराई और पापों में ना पड़े बल्कि उन्हें सुने और ईश्वर के प्रेम में सदैव बने रहें। यीशु अपने शर्तहीन प्रेम के कारण हमें अकेला या अनाथ नहीं छोड़ने की बात कहते हैं। अतः पिता ईश्वर की ओर से यीशु में दिया गया पवित्र आत्मा सदैव हमारे संग सहायक के रूप में रहते और चलते हैं। अपने इस आत्मा को यीशु ख्रीस्त सच्चाई का आत्मा कहते हैं, जो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बेहतर चीजों के चुनाव हेतु मदद करते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें सुनते और उनकी आज्ञाओं का अनुपालन करते हैं। ईश्वर के आत्मा से हमारी वार्ता एक शांतिमय वातावरण में होती है, जिसका उदाहरण स्वयं यीशु ने पर्वत की ऊंचाई में जाते हुए रात्रि पहर में और भोर के एकांत समय को अपने लिए प्रार्थना हेतु चुनाव करते हुए समझाया है। प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति एक निश्चल शांतिमय वातावरण में होती है, जहां हम शब्दों के स्वर को नहीं बल्कि मंद मंद श्वासन की गहराई को अनुभव करते हैं। यदि हम ईश्वर के संग ऐसे संबंध में प्रवेश करते तो हम उन्हें सच्चे हृदय से प्रेम करने के योग्य होते हैं। आइए हम अपने सहायक पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें शांति में अपने संग वार्ता करने की शिक्षा प्रदान करें, जिससे हम ईश्वर की दिव्य योजना को अपने लिए समझ सकें और उनके अनुरूप अपना जीवन यापन कर सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने माननीय फादर विजय पॉल रेड्डी दुगिमपुट्टी को तेलंगाना के वारंगल धाम प्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वे इस समय धाम प्रांत के प्रशासक हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष विजय पॉल रेड्डी का जन्म 8 जनवरी 1965 को भारत के मनुगोड्डा में हुआ था। हैदराबाद में सेंट जॉन्स रीजनल सेमिनरी में दर्शन शास्त्र एवं ई शास्त्र की पढ़ाई के बाद उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की। उनका पुरोहिताभिषेक 2 अप्रैल 1992 को वारंगल धम प्रांत के लिए हुआ था। 8 मई को पोम्पे एवं नेपल्स में अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम कार्यक्रम के रूप में पोप लियो चौदहवें ने नेपल्स वासियों को न्याय, एकजुटता एवं सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित शांति के लिए नए सिरे से प्रतिबद्ध होने की अपील की। पोप बनने की पहली सालगिरह पर पोम्पे एवं नेपल्स की यात्रा में पोप लियो चौदहवें ने नेपल्स के बीचों बीच शानदार प्लेबिसितो प्रांगण में लगभग 50,000 लोगों का अभिवादन किया जो उनसे मिलने के लिए एकत्रित हुए थे। उन्हें संबोधित कर उन्होंने कहा, भाइयों एवं बहनों, आपके सुंदर स्वागत के लिए धन्यवाद। उनके अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत के लिए शुक्रिया अदा करते हुए, जिसकी तुलना उन्होंने वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बर्नीनी के स्तंभों के गले लगाने से की, उन्होंने शहर की सामाजिक एवं आध्यात्मिक हालत पर ध्यान दिया। सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए, जहाँ एमाउस के शिष्यों की कहानी है, उन्होंने नेपल्स को एक ऐसा शहर बताया जो अत्यधिक खूबसूरती और गहरे घाव दोनों से जाना जाता है। उन्होंने शहर से उठती आवाज को याद किया, सुंदरता की आवाजें लेकिन गरीबी, डर और भटकाव की भी। उनकी तुलना उन थके हुए और निराश शिष्यों से की जो सड़क पर पुनर्जीवित येसु से मिलते हैं। उनसे प्रश्न करते हुए पोप ने कहा, क्या सचमुच मायने रखता है? और नागरिकों को ऐसे माहौल में फिर से अर्थ खोजने के लिए प्रेरित किया जो अक्सर थकान, उदासीनता एवं सामाजिक बिखराव से कमजोर हो गया है। पोप ने कहा, भाइयों एवं बहनों, इस शहर में जीवन, इंसाफ एवं अच्छाई की चाह बढ़ती है जिससे बुराई, निराशा एवं हार मानकर दबाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर खुद से पूछना चाहिए, असल में क्या मायने रखता है? उदासीनता की थकान के बजाय प्रतिबद्धता के जोश के साथ, बुराई के डर के बदले अच्छा करने की हिम्मत के साथ, बेपरवाही के बजाय घावों को भरने के साथ यात्रा फिर शुरू करने के लिए क्या जरूरी और आवश्यक है? उन्होंने कहा, नेपल्स आज एक बड़ी उलझन का सामना कर रहा है। पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी उस आर्थिक तेजी से मेल नहीं खा रहा है जो सच में पूरे सामाजिक समुदाय को जोड़ सके। शहर में अब भी एक सामाजिक विभाजन है जो न केवल केंद्र में बल्कि बाहरी इलाकों में भी साफ दिखता है, यहाँ तक कि ऐतिहासिक केंद्र के बीच में भी। कई इलाकों में असमानता और गरीबी का एक असली भूगोल देखा जा सकता है जो लंबे समय से अनसुलझी समस्याओं के कारण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, प्रभु आपको हमेशा सुसमाचार के प्रति वफादार रखें और नेपल्स शहर को आशीर्वाद दें।
1: संत पापा लियो चौदहवें ने कंसिस्ट्री हॉल में आज सुबह इंटर फुटबॉल मैनेजरों और खिलाड़ियों से मुलाकात की जिन्होंने पिछले रविवार को अपना 21वां सीरीज ए जीता था। संत पापा के साथ यह मुलाकात मिलान के सैन सीरो स्टेडियम में परमा पर जीत के बाद पहले से ही हो रहे समारोहों को समाप्त करती है। यह एक परंपरा है जिसमें संत पापा आमतौर पर विजेताओं का स्वागत करते हैं। संत पापा ने उनका अभिवादन कर कहा, इस सुंदर अवसर पर मैं इसका हिस्सा बनकर खुश हूँ। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो कड़ी मेहनत, टीम वर्क, अनुशासन और लगन की वजह से हासिल हुआ है, जिसे आपने पिछले मैच जैसे रोमांचक पलों में भी बनाए रखा है। संत पापा ने उन्हें अपने अनुभवों पर सोचने के लिए प्रेरित किया ताकि खासकर युवाओं को उनके विकास के लिए एक काम का संदेश दिया जा सके। संत पापा ने कहा, आजकल कई युवा आपको अपने हीरो के तौर पर, रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं और यह आप पर एक जिम्मेदारी डालता है जो प्रदर्शन से कहीं ज्यादा है, और इसके लिए आपको एथलीट के तौर पर मूल्यों के गवाह बनने की जरूरत है। इसके बाद संत पापा ने लिखे हुए टेक्स्ट से हटकर समझाते हुए कहा, आजकल युवाओं को सच में रोल मॉडल की जरूरत है और आप जो करते हैं उसका उनकी जिंदगी पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचना चाहिए। आप यह पक्का करें कि बहुत से लोग आप में और आपके व्यवहार में सच्चाई और ईमानदारी को पहचानें। अपनी बधाई दोहराते हुए संत पापा लियो ने वहां मौजूद लोगों को दिल से शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया। उधर पिछले शुक्रवार को लेबनान में सल्वातोरियन धर्म बहनों के एक कॉन्वेंट और एक पुराने स्कूल को इजरायली सेना ने तबाह कर दिया। हिजबुल्ला और इसराइली सेना के बीच गोलीबारी में फंसे कुछ क्रिश्चिय गांवों को भी तबाह कर दिया गया है और वहां के लोगों को खाली करा दिया गया है। मेलकाइट ग्रीक कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन लेबनानी सरकार, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रही है कि वे आम लोगों, उनकी संपत्ति और उनके धार्मिक संस्थानों की रक्षा करें ताकि इन गांवों को चुपचाप खत्म न कर दिया जाए। उधर सीसीबीआई की कार्यकारी समिति ने पवित्र क्रूस की दया की धर्म बहनों के धर्म समाज की सिस्टर दीप्ति मिंज को महिला आयोग का सहयोगी सचिव नियुक्त किया है। सिस्टर दीप्ति मिंज को सामाजिक विकास और प्रेरितिक कार्यों में 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। उनका काम ज्यादातर झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े दलों के बीच रहा है। छत्तीसगढ़ असनाबहार में जन्मी सिस्टर दीप्ति ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जुड़े जबलपुर के जेवियर संस्थान के विकास कार्य और अध्ययन से ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए किया है। उनके काम में स्वयं सहायता समूह बनाना, सहकारिता को बढ़ावा देना और नेतृत्व एवं क्षमता निर्माण प्रोग्राम चलाना शामिल है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता, परियोजना समन्वयक और सामाजिक कार्य निदेशिका के रूप में अपना काम किया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव का जीवन दूसरों की सहायता के बिना इस पृथ्वी पर असंभव तो नहीं, पर निश्चित रूप से थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। मानव अपने में कितना भी उन्नतशील या सामर्थ्यवान क्यों ना हो जाए, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उसे किसी न किसी बात को लेकर दूसरे से मदद या सहायता हेतु आश्रित होना पड़ता है। यह हमारे लिए मानवीय संवेदना को व्यक्त करता है, जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि मानव के रूप में हम अपने में पूर्ण नहीं हैं और ना ही कभी होंगे। श्रोताओं, पास्का के 6वें रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम ईश्वर के द्वारा मानव को दिए गए एक सहायक की चर्चा सुनते हैं। वह सहायक जो सदैव हमारे निकट रहता और हमें अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में मदद करता है, जिससे हम सही मार्ग का चुनाव कर सकें। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि क्या हम ईश्वर के द्वारा दिए गए अपने सहायक की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। क्या हम उनकी बातों को, जो हमारे लिए सलाह के रूप में आती है, सुनते हैं? क्या हम उस सहायक से वार्ता करते और उसे अपने जीवन में अहमियत देते हैं?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता है और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है, उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें ईश्वर के द्वारा मिले सहायक से एक अच्छा संबंध स्थापित करने को अग्रसर करे। विशेषकर हम उस आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में जान सकें, उन्हें पहचान सकें, जिससे हम उनके निर्देशानुसार उन सारी बातों का चुनाव कर सकें जो हमारे लिए सदैव बेहतर होती हैं। श्रोताओं, प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए गैर यहूदियों में सुसमाचार का तेजी से प्रसारित होने की बात कहता है। गैर यहूदियों के मध्य हम फिलिप को ईश वचन घोषित करते और कई चमत्कारों को पूरा करते हुए सुनते हैं, जिन्हें देखकर विश्वासियों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रेरित पेतरुस और योहन आकर बपतिस्मा प्राप्त नए दीक्षार्थियों पर अपना हाथ रखते और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। नए ख्रिस्तीय विश्वासियों का पवित्र आत्मा से अभियंजन हमें भी अपने जीवन में पवित्र आत्मा के अभियंजन स्वरूप मिली ईश्वरीय वरदानों की परख करने और उसके अनुरूप आचरण करने का निमंत्रण देता है। ईश्वर का आत्मा हमें सर्वप्रथम अपने विश्वास में सुदृढ़ करता और पुनर्जीवित प्रभु का साक्ष्य देने को प्रेरित करता है। यह हमें सभी प्रकार के भय और शंका से मुक्त कर अपने में स्वतंत्रता की अनुभूति प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप हम ईश्वर के वे सुयोग्य साधन बनते हैं, जिनका उपयोग वे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। इस भांति हम स्वयं का साक्ष्य नहीं देते, बल्कि उस ईश्वर का साक्ष्य देते हैं जिन्होंने हमें जीवन प्रदान किया है। श्रोताओं, हमारे जीवन में इस मनोभाव को आज का दूसरा पाठ व्यक्त करता है, जो संत पेतरुस के पहले पत्र से लिया गया है। हमें प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखने और इसके साथ ही अपने अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए कहा जाता है। हमारा अंतःकरण हमारे लिए और कुछ नहीं बल्कि हृदय का वह आंतरिक स्थल है जिसे हम ईश्वरीय आत्मा के निवास स्थल स्वरूप पाते हैं, जहां पवित्र आत्मा हमें जीवन की सच्चाई, अच्छाई और भलाई पूर्ण बातों से रूबरू करते हैं। वे बातें हमारे लिए होती हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर की महिमा और आराधना करते हुए अपने जीवन में ईश्वरीय दिव्य प्रेम, शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। अपने इस अनंत अनुभूति को दूसरों के संग साझा करने हेतु ईश्वर हमें प्रेरित करते और हमें स्वयं से बाहर उनके मध्य ले चलते हैं जिन्हें उनकी आशीष और कृपाओं अर्थात पवित्र आत्मा की जरूरत है। अपने शुद्ध अंतःकरण के कारण हम स्वयं में लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि जो हम पर दोष लगाते उन्हें अपने में लज्जित होना पड़ता है। इस भांति ईश्वर हमें अपने अच्छे कार्यों का साक्षी बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने स्वयं हमारे लिए किया है। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसे हमने सुना हमें ईश्वर के प्रेम का एक साक्ष्य देता है। हम जिन्हें प्रेम करते और हृदय से चाहते हैं उन्हें हम उन सुंदर और अच्छी वस्तुओं को प्रदान करते हैं, इसी चाह के साथ कि वे चीजें जीवन भर उनके संग बनी रहें और उन्हें हमारे अमर प्रेम की याद दिलाएं। ईश्वर हमारे संग ठीक वैसा ही करते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा को प्रदान किया है जो सदैव हमारे संग निवास करते और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हम बुराई और पापों में ना पड़े बल्कि उन्हें सुने और ईश्वर के प्रेम में सदैव बने रहें। यीशु अपने शर्तहीन प्रेम के कारण हमें अकेला या अनाथ नहीं छोड़ने की बात कहते हैं। अतः पिता ईश्वर की ओर से यीशु में दिया गया पवित्र आत्मा सदैव हमारे संग सहायक के रूप में रहते और चलते हैं। अपने इस आत्मा को यीशु ख्रिस्त सच्चाई का आत्मा कहते हैं, जो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बेहतर चीजों के चुनाव हेतु मदद करते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें सुनते और उनकी आज्ञाओं का अनुपालन करते हैं। ईश्वर के आत्मा से हमारी वार्ता एक शांतिमय वातावरण में होती है, जिसका उदाहरण स्वयं यीशु ने पर्वत की ऊंचाई में जाते हुए रात्रि पहर में और भोर के एकांत समय को अपने लिए प्रार्थना हेतु चुनाव करते हुए समझाया है। प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति एक निश्चल शांतिमय वातावरण में होती है, जहां हम शब्दों के स्वर को नहीं बल्कि मंद मंद श्वासन की गहराई को अनुभव करते हैं। यदि हम ईश्वर के संग ऐसे संबंध में प्रवेश करते तो हम उन्हें सच्चे हृदय से प्रेम करने के योग्य होते हैं। आइए हम अपने सहायक पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें शांति में अपने संग वार्ता करने की शिक्षा प्रदान करें, जिससे हम ईश्वर की दिव्य योजना को अपने लिए समझ सकें और उनके अनुरूप अपना जीवन यापन कर सकें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने माननीय फादर विजय पॉल रेड्डी दुगिमपुट्टी को तेलंगाना के वारंगल धाम प्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वे इस समय धाम प्रांत के प्रशासक हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष विजय पॉल रेड्डी का जन्म 8 जनवरी 1965 को भारत के मनुगोड्डा में हुआ था। हैदराबाद में सेंट जॉन्स रीजनल सेमिनरी में दर्शन शास्त्र एवं ई शास्त्र की पढ़ाई के बाद उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की। उनका पुरोहिताभिषेक 2 अप्रैल 1992 को वारंगल धम प्रांत के लिए हुआ था। 8 मई को पोम्पे एवं नेपल्स में अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम कार्यक्रम के रूप में पोप लियो चौदहवें ने नेपल्स वासियों को न्याय, एकजुटता एवं सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित शांति के लिए नए सिरे से प्रतिबद्ध होने की अपील की। पोप बनने की पहली सालगिरह पर पोम्पे एवं नेपल्स की यात्रा में पोप लियो चौदहवें ने नेपल्स के बीचों बीच शानदार प्लेबिसितो प्रांगण में लगभग 50,000 लोगों का अभिवादन किया जो उनसे मिलने के लिए एकत्रित हुए थे। उन्हें संबोधित कर उन्होंने कहा, भाइयों एवं बहनों, आपके सुंदर स्वागत के लिए धन्यवाद। उनके अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत के लिए शुक्रिया अदा करते हुए, जिसकी तुलना उन्होंने वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बर्नीनी के स्तंभों के गले लगाने से की, उन्होंने शहर की सामाजिक एवं आध्यात्मिक हालत पर ध्यान दिया। सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए, जहाँ एमाउस के शिष्यों की कहानी है, उन्होंने नेपल्स को एक ऐसा शहर बताया जो अत्यधिक खूबसूरती और गहरे घाव दोनों से जाना जाता है। उन्होंने शहर से उठती आवाज को याद किया, सुंदरता की आवाजें लेकिन गरीबी, डर और भटकाव की भी। उनकी तुलना उन थके हुए और निराश शिष्यों से की जो सड़क पर पुनर्जीवित येसु से मिलते हैं। उनसे प्रश्न करते हुए पोप ने कहा, क्या सचमुच मायने रखता है? और नागरिकों को ऐसे माहौल में फिर से अर्थ खोजने के लिए प्रेरित किया जो अक्सर थकान, उदासीनता एवं सामाजिक बिखराव से कमजोर हो गया है। पोप

0: नेपल्स आज एक बड़ी उलझन का सामना कर रहा है। पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी उस आर्थिक तेजी से मेल नहीं खा रहा है जो सच में पूरे सामाजिक समुदाय को जोड़ सके। शहर में अब भी एक सामाजिक विभाजन है जो न केवल केंद्र में बल्कि बाहरी इलाकों में भी साफ दिखता है, यहाँ तक कि ऐतिहासिक केंद्र के बीच में भी। कई इलाकों में असमानता और गरीबी का एक असली भूगोल देखा जा सकता है जो लंबे समय से अनसुलझी समस्याओं के कारण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, प्रभु आपको हमेशा सुसमाचार के प्रति वफादार रखें और नेपल्स शहर को आशीर्वाद दें।
1: संत पापा लियो 14वें ने कंसिस्ट्री हॉल में आज सुबह इंटर फुटबॉल मैनेजरों और खिलाड़ियों से मुलाकात की जिन्होंने पिछले रविवार को अपना 21वां सीरीज ए जीता था। संत पापा के साथ यह मुलाकात मिलान के सैन सीरो स्टेडियम में परमा पर जीत के बाद पहले से ही हो रहे समारोहों को समाप्त करती है। यह एक परंपरा है जिसमें संत पापा आमतौर पर विजेताओं का स्वागत करते हैं। संत पापा ने उनका अभिवादन कर कहा, इस सुंदर अवसर पर मैं इसका हिस्सा बनकर खुश हूँ। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो कड़ी मेहनत, टीम वर्क, अनुशासन और लगन की वजह से हासिल हुआ है, जिसे आपने पिछले मैच जैसे रोमांचक पलों में भी बनाए रखा है। संत पापा ने उन्हें अपने अनुभवों पर सोचने के लिए प्रेरित किया ताकि खासकर युवाओं को उनके विकास के लिए एक काम का संदेश दिया जा सके। संत पापा ने कहा, आजकल कई युवा आपको अपने हीरो के तौर पर, रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं और यह आप पर एक जिम्मेदारी डालता है जो प्रदर्शन से कहीं ज्यादा है, और इसके लिए आपको एथलीट के तौर पर मूल्यों के गवाह बनने की जरूरत है। इसके बाद संत पापा ने लिखे हुए टेक्स्ट से हटकर समझाते हुए कहा, आजकल युवाओं को सच में रोल मॉडल की जरूरत है और आप जो करते हैं उसका उनकी जिंदगी पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आपको अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचना चाहिए। आप यह पक्का करें कि बहुत से लोग आप में और आपके व्यवहार में सच्चाई और ईमानदारी को पहचानें। अपनी बधाई दोहराते हुए संत पापा लियो ने वहां मौजूद लोगों को दिल से शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया। उधर पिछले शुक्रवार को लेबनान में सल्वातोरियन धर्म बहनों के एक कॉन्वेंट और एक पुराने स्कूल को इजरायली सेना ने तबाह कर दिया। हिजबुल्ला और इसराइली सेना के बीच गोलीबारी में फंसे कुछ क्रिश्चिय गांवों को भी तबाह कर दिया गया है और वहां के लोगों को खाली करा दिया गया है। मेलकाइट ग्रीक कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन लेबनानी सरकार, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रही है कि वे आम लोगों, उनकी संपत्ति और उनके धार्मिक संस्थानों की रक्षा करें ताकि इन गांवों को चुपचाप खत्म न कर दिया जाए। उधर सीसीबीआई की कार्यकारी समिति ने पवित्र क्रूस की दया की धर्म बहनों के धर्म समाज की सिस्टर दीप्ति मिंज को महिला आयोग का सहयोगी सचिव नियुक्त किया है। सिस्टर दीप्ति मिंज को सामाजिक विकास और प्रेरितिक कार्यों में 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। उनका काम ज्यादातर झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े दलों के बीच रहा है। छत्तीसगढ़ असनाबहार में जन्मी सिस्टर दीप्ति ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जुड़े जबलपुर के जेवियर संस्थान के विकास कार्य और अध्ययन से ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए किया है। उनके काम में स्वयं सहायता समूह बनाना, सहकारिता को बढ़ावा देना और नेतृत्व एवं क्षमता निर्माण प्रोग्राम चलाना शामिल है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता, परियोजना समन्वयक और सामाजिक कार्य निदेशिका के रूप में अपना काम किया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।